0: Happy Father's Day. Thank you to Dad.
1: Yay.
0: Open it. Okay, open. Sure, sure. Wow.
2: Dear Father, thank you for spending money on me. Thank you.
0: Thank you. Yay.
3: Daddy said I was his favorite child. I just feel like he loves me the most.
4: Happy Father's Day.
0: Thank you.
5: This program is available on demand for free on MeWatch.
6: Do you know there's a river in here?
7: No other country can let you see the bottom of a river.
6: And what was around the bend?
8: It actually swerved 30 degrees to the right.
6: What's natural becomes surprising.
9: First time I see.
8: Oh, is it? Water. First time, right?
9: Clean water.
8: Yes.
6: Our rivers were once open waterways used for hard work and tough living.
10: The river's location made it ideal for traders to moor their vessels under houses.
11: And as the population grew, the rivers became dirtier.
12: Sometimes you will find dead body.
13: Whatever you do, drop straight into the water.
6: A source of stories about predators and prisoners, of life and death, and brave endeavors. Now, the rivers are hard to find.
7: The source of the Singapore River is actually further west.
6: Take a ride back to the life and stories of our lost rivers. Watch Lost Rivers on demand at cna.asia.
14: मुश्किल से गाड़ी निकल रहा है कि कोई बहुत ही मुश्किल है ये सामान इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें आना पड़ रहा है कि बिटुमिन लोड है क्योंकि रोड बनाने के लिए बिटुमिन चाहिए चाहिए वहां पे माय गॉड
15: बहुत टेंशन है बताया कि यहां का मौसम अभी 3 दिन बहुत खराब रहने वाला है
16: जो सो 我今天走過最窄的路 货车司机的话，每年都因为高压反应不幸身亡的这种例子，每年都会有。
14: 50 साल में सबसे बड़ा डिजास्टर ये आ रहा है। 15 से 20 ट्रक हमारे जो है पानी में बह गए हैं।
17: अभी 30 से 35 ट्रक यहाँ पे फंसे हुए हैं।
14: सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एम्बुलेंस वगैरह के जाने के लिए भी रास्ता नहीं है।
15: इंडिया में लोग ट्रक ड्राइविंग को जॉब के रूप में नहीं देखते थी मैं सीमेंट फैक्ट्री में गई थी तो वहाँ पर मुझे एंटर नहीं होने दे रहे थे कि लेडी ड्राइवर अलाउ नहीं है

0: दादा चाय बनाएंगे?
1: बनाऊंगा, एक मिनट।
0: हाँ, लेकिन बिना शक्कर की चाहिए। पानी पी सकते हैं दादा? पकौड़े वकौड़े बनाते हो क्या दादा?
1: पकौड़े कहाँ बनेंगे, आगे दुकान नहीं है।
0: जी जी जी।
2: आई वाले ने जब मुझे देखा तो फर्स्ट में तो उसे नहीं मालूम था कि मैं ये गाड़ी से आई हूँ, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा बात से कि मैं ट्रक ड्राइविंग करके लाई हूँ, तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने मुझे इम्पोर्टेंस दे करके मेरे लिए स्पेशली शुगरलेस चाय बना के मुझे दिया और स्ट्रेंज लगा उसे।
0: हाँ, केबल टूट गई।
2: तो सबसे पहले हमें अपने गाड़ी के सारे टायर चेक करना, सारे टायर चेक करने के बाद में आपका बैटरी वगैरह का कनेक्शन चेक करना, फिर आपके रेडिएटर में कूलेंट का लेवल बराबर है कि नहीं है वो चेक करना है।
0: ये वाला केबल टूट गया।
2: जब मैंने थोड़ी सी ब्रेक मार के गाड़ी को चेक किया तो मेरा दो बोल्ट ढीले थे, एक पकड़ जब कम हो जाएगी तो दूसरे भी ढीले होते चले आएंगे, एक की वजह से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सभी चीज़ धीरे धीरे फिर मुझे आगे जाके ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जेंट्स लोगों के बराबरी औरतें भी अपनी ट्रक का केयर कर सकती हैं।

0: रमेश जी,
1: मैम आएगी ना गाड़ी यार?
0: हाँ 100% कंफर्म है, मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ बात करने के लिए।
2: इंडिया में महिला ट्रक ड्राइवर्स मैंने देखने नहीं मिला है, बस सुना है कहीं कोई और भी चलाते हैं, बट मुझे अभी तक इतना चेक पोस्ट क्रॉस किया, इतना स्टेट क्रॉस किया, बट मुझे अभी तक कोई भी महिला ट्रक ड्राइवर क्रॉस नहीं हुआ रोड पे। यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी, वॉशरूम नहीं है, इसलिए भी महिलाएं इस फील्ड में आना नहीं चाहती।
0: नहीं नहीं आपने कागज के ऊपर 10 बजे का टाइम दिया था, लेकिन मुझे कहा था कि एक आध घंटे लेट भी पहुंचे तो चलेगा। ये नहीं हुआ था, आप मेरे को कच्चा माल का भाड़ा थोड़े ना दे रहे हैं, आप सूखा माल का भाड़ा दे रहे हैं। मैंने फ्रूट भरा होता तो अलग बात होती है, आपका माल तो सूखा भरा हुआ है, भाड़ा भी बढ़ा के नहीं दिया, टाइम पे पहुँच रही है गाड़ी, मशीनरी है हमारे हाथ में, जो इंजिन है वो उसके हिसाब से ही चलेगा ना, ऐसा थोड़ी ना एरोप्लेन है उड़ करके पहुंच गया।
2: मैं ट्रक फील्ड में जब आई थी तब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं जिस फील्ड में पैर रख रही हूँ वहाँ पे ज़्यादा मैन डोमिनेटेड पर्सन, मतलब फील्ड है या फिर वुमेन है उसमें। तो आज भी मैं उस तरह से नहीं देखती हूँ कि जेंट्स लोग इस फील्ड में मुझे किस नज़र से देखते हैं, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ। इंडिया में लोग ट्रक ड्राइविंग को जॉब के रूप में नहीं देखते। मैं जब ट्रक ड्राइविंग में आई तो मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि लोग क्या सोचते हैं। ड्राइवर्स लोगों को कोई छोटी नज़र से देखता है या फिर अच्छा जॉब नहीं समझते हैं, ऐसा भी मुझे कभी नहीं लगा। मुझे ये लगा कि जो भी काम हमें करना है उसको हमने कर लेना चाहिए, पब्लिक क्या सोच रही है ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ये सोच के मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम किया। मोस्टली मैं पेट्रोल पंप पे पार्क करती हूँ क्योंकि वहाँ पे वॉचमैन एंड कैमरास अवेलेबल होते हैं, इसलिए वहाँ सेफ होता है। नो एंट्री में अंदर गाड़ी आ नहीं सकती है, और किसी भी शहर में नो एंट्री में अंदर गाड़ी को ज़्यादातर पार्क नहीं करती हूँ, बाहर ही आउटर एरिया में पार्क। मतलब मैंने मोटरसाइकिल से सिटी गई थी बाइक से, क्योंकि मेरे पास बस से जाने के लिए या किसी और चीज़ से जाने के लिए मुझे कुछ देर तक वॉक करना होता है, पैदल चलना पड़ता है, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल यूज़ की। वेदर तो हॉट था काफ़ी, समर बहुत हाईएस्ट लेवल पे चल रही है टेम्परेचर इंडिया में अभी, पर ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं लगा क्योंकि मैं गर्मी में गाड़ी चलाती हूँ, इन सब आदतों से मैं मतलब मुझे पता है कि इतनी गर्मी तो आराम से मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ।

0: तो मुझे माल रेगुलरली 20 साल से तो मैं माल ले रही हूँ मैदा मिल से, और जो कंपनी है वो जनरली फ्लोर बनाती है जो चपाती का आटा होता है, मुझे भी भाड़ा अच्छा मिलता है, 50% इसमें सेविंग हो जाता है।
1: नमस्ते पाटिल जी, कहाँ का माल है आपके पास?
2: अकोला है।
1: अकोला है तो मैं अकोला लगा देती हूँ गाड़ी,
3: 120 नहीं, 100 या 100-110 तक रखिए, वो सही रहेगा।
1: ठीक है, लगा देते हैं अपन नितेश जी गाड़ी।
0: अकोला सिटी में जा रहा है महाराष्ट्र, भोपाल से ये सिटी लगभग 550 किलोमीटर के लगभग है।
4: My opinion, especially the customer feedback is very good.
5: I want to bring it down to the next generation so that this hawker trade will not die off.
6: I've been wasted 20 years inside.
7: For hawker, people don't judge. You come and buy food, you also would ask me whether I'm an ex-convict or not.
8: I'm very grateful Madam Haja teach me this sambal. Then I feel like, I don't know, someone trusted me.
9: 没有人这样炒东西的，再怎么炒，你都没有动到底了。来，拿下来，不是这样的。
8: Today haven't finished frying, around 150 kg, a lot. Not okay, aja. I came here to train, aja. I not come here to work.
10: Today we are here to judge this new hawker's skill.
11: He don't want to see anybody. He's afraid to go out.
12: Across Singapore, a growing number of youth are isolating themselves. And their families are at their wits' end.
13: It is really very heartaching that a child stays inside a room, not talking to him.
14: We went to see the psychiatrist. The psychiatrist said, there's nothing else we can do for your son.
15: Since November 2023, he has locked himself up.
12: What made them withdraw from the world? And what will it take to bring them back?
16: What I want to do is be able to go out alone instead of having companies, taking the train and buses alone. But I do not know how I can overcome that fear yet.
17: One day, I'll be able to open the door with my heart.
12: Shut down. On demand. At cna.asia.
18: Tiger Brokers Singapore presents.
19: It's another red here.
20: When the World Cup begins, you hear it. Catch the FIFA World Cup 2026 on MediaCorp. Go to mewatch.sg/FIFA World Cup for more details.
19: It's all over now.
18: Brought to you by main sponsors, Sing Life, Starry Blue Panda Remit, and the following co-sponsors.
0: मेरे लगभग पिछले हस्बैंड के जाने के बाद से मैं दोनों बच्चों के साथ में इस घर में रह रही हूँ। मैं जब ट्रक लेके जाती थी तो मुझे कि मैं 2 दिन में या 3 दिन में रिटर्न नहीं आ सकती हूँ। उनके लिए कुछ जो मार्केट से जो भी अवेलेबल होता था, फूड रेडी टू यूज़, वो उन लोगों को टिफिन के लिए अवेलेबल होता था। मैं ना बेटा अकोला जा रही हूँ, ये जाने में मुझे 2 दिन लगेंगे, और अभी 2 दिन की सब्जियां तो रखी हुई है, बाकी तुम लोग जा ले आना। आटा पीस दिया है, डब्बा भरा हुआ है, थोड़ा आटा रहा है, गेहूं पीसना है।
21: तो मैंने कपड़े भी धो लिए।
22: थैंक यू अश्विन, थैंक यू।
23: इसीलिए सोचिए
0: बेटा, तू आता है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। समर ड्राइविंग के लिए स्पेशली मुझे होममेड चीजें नहीं मिलती है, जो चीज़ें मुझे परचेस करनी है रोडों पे वो नहीं मिलती है, जैसे नट्स मुझे रोड पे नहीं मिलते हैं वो मैं कैरी करके ले जाती हूँ। क्लॉथ मुझे बहुत लूज चाहिए होते हैं जिससे कि मुझे हवा लगती रहे बॉडी को, स्पेशली मैं डिज़ाइन करवाती हूँ समर क्लॉथ और फिर वो लेकर जाती हूँ गाड़ी के ऊपर। तो मैं मेरा बहुत बड़ा बैग नहीं लेती हूँ, क्योंकि बड़ा बैग लो या छोटा बैग लो, आपके जेब में अगर मनी है तो आप एवरी हर चीज़ आप खरीद सकते हो बाजार से। बहुत इजी वे में चलती हूँ कि कोई टेंशन वाली बात नहीं।

मैदा फैक्ट्री से मैंने 4:30 पे गाड़ी को आउट किया बिकॉज मुझे 6 o'clock के पहले गाड़ी को भोपाल सिटी से क्रॉस करना था। भोपाल सिटी के अंदर हैवी व्हीकल्स को नो एंट्री है। मैदा मिल में कल रात में लोडिंग के लिए गाड़ी लेकर गई थी, 11 बजे के बाद गाड़ी अंदर गई भोपाल में। मैंने 19 टन आटा लोड किया वहाँ से। अंदर जाने के लिए 11 से 6 बजे तक भोपाल के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर हैवी व्हीकल्स अलाउ नहीं हैं। अगर मैं 6 बजे के बाद भोपाल के अंदर के रोड के ऊपर अगर गाड़ी मिल जाती है तो वहाँ पे नो एंट्री होने से वहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस है वो जगह जगह खड़ा रहता है, क्योंकि पब्लिक उठकर पब्लिक का डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है और एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए वहाँ का पुलिस अलर्ट रहता है। मैंने जब सुबह 6 बजे गाड़ी को आउट कर लिया, उसके बाद में मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैंने गाड़ी को सक्सेसफुली टाइम लिमिट में मैंने बाहर निकाल लिया।

वह 20-21 ईयर की थी उस समय मेरी शादी की। हस्बैंड बाहर एडवोकेट थे, लॉ प्रैक्टिस करते थे और उनका साइड बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का। अचानक एक दिन उनका भोपाल सिटी में एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट। उनके जाने के बाद में तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कुछ काम करना है एज ए अर्निंग मनी के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना है। उनके जाने के बाद मुझे ज़रूरत पड़ी बच्चों का परवरिश के लिए, तो मेरे हस्बैंड के ट्रक्स थे, मैंने ड्राइवर रख के उन्हें ऑपरेट करवाया। लेकिन ड्राइवर रखने के बाद सक्सेसफुली मुझे उसमें कुछ इनकम नहीं हुआ, मुझे बहुत लॉस हुआ, क्योंकि ड्राइवर्स केयरफुली नहीं चलाते हैं। कई सारी जगह एक्सीडेंट कर दिए, एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी को वहीं छोड़ के भाग गए होंगे। मुझे किसी ड्राइवर का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, मैं अपना गाड़ी खुद ही लेके चला जाऊँगी।

वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि लॉक करके सोती हूँ गाड़ी को अंदर से, पर फिर भी ऐसा कई बार हुआ है कि डोर को किसी ने खोलने की कोशिश की है, मेरे कुछ पैसे है, मोबाइल है, वो चोरी करना, और चोरी हुआ भी है, मेरा मोबाइल भी चोरी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चोरी हुई है, मेरी वॉच भी चोरी हुई है। लेकिन वो चोरी होने से मुझे पता चला है कि अब ये चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम बहुत सारी चीज़ सिखाई है कि हमारा खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है।

घाट रोड वो मतलब हमारे यहाँ पे तो जो भी हिली एरियाज होते हैं। और घाट रोड जो था वो काफ़ी छोटा था, जिस पे दो गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से क्रॉस हो सकती थी। ऐसा लगता है कि अगर दूसरी दो गाड़ियाँ अगर क्रॉस होगी तो बहुत मुश्किल से क्रॉस होगी, या तो एक का टायर नीचे उतरेगा, रोड से नीचे उतरेगा, दो बड़ी गाड़ियाँ। मेरी गाड़ी बड़ी है और एक बड़ी बस भी क्रॉस हुई इस रोड के ऊपर। मुझे उस समय जरूर महसूस हो रहा था कि मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी, तब अचानक मेरे मुंह से निकला उफ, इतना बड़ा गाड़ी क्रॉसिंग के लिए आ गया। चलाई तो मुझे ऐसा लगा कि इस गर्मी की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक कम था। आज टेम्परेचर 44 पे पहुंच गया होगा, गर्मी ज़्यादा है, इंजन भी हीट होता है,

0: भारत में अभी तक के सभी स्टेट में से सबसे ज्यादा गर्मी महाराष्ट्र में पड़ती है।
1: मैं अभी महाराष्ट्र स्टेट में चल रही हूँ। हाँ, मैं अकोला जा रही हूँ अनलोड करने।

0: अभी तक मैं गाड़ी अकेले ही करती आई, तो मुझे रस्सा और त्रिपाल और कवर भी मुझे ही करना पड़ता है। आज भी मुझे ही उसको ओपन करना पड़ा। इतना 42 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में ऊपर से कवर था वो बहुत गर्म हो गया था। मेरे गाड़ी के अंदर गेहूं का आटा भरा हुआ था, उसका 50 किलो का एक बैग के हिसाब से 19 टन माल भरा था, तो वो टोटल 380 बैग था। एक उधर से इधर बता रहा, एक उधर बता रहा।
1: नहीं जाना जाना, सही जाए। बस, बस, बस, बस, बस,
0: बस, बस, बस। भाई छल्ले गिन लेना।
2: 40
0: के
2: डेली कहा जाए, गाड़ी खाली करने का डेली पैसा देते, तो 4 आदमी में 300-400 रुपये आ जाते हैं जिसको।
3: सर एक गाड़ी थी, कभी 3 गाड़ी का है,
2: जाता हूँ यार 2 घंटे। तो पहले से इधर गर्मी खामगांव और अकोला इधर ज़्यादा ही रहता।
0: इतनी गर्मी में ओपन प्लेस में वो लोग काम कर रहे हैं, उनका बॉडी को हैबिट हो गया है, तो आप वैसे माहौल से निकल सकते हैं इजीली। अंदर डालना है,
4: डाल दिया मैंने।

0: मैं लगातार गाड़ी चलाती हूँ, चाय ब्रेक इसलिए जरूरी है कि 50 किलोमीटर के आसपास या 100 किलोमीटर।
1: मैंने पहली बार देखा कोई लेडीज को ट्रक चलाती हुई।
2: तुम्हारे इधर कोई लेडीज है?
1: आप कैसा है, खेत में जाने का?
2: हाँ।
1: और घर में आने का?
2: तो खेती कर,
1: ऊपर के पानी के भरोसे रहना पड़ता, और खेती हमारी सूखी है, पूरी पत्ते है खेती में, उस हिसाब से आदमी क्या करेगा।
2: अरे मैंने सुना था तुम्हारे गांव में कुछ किसानों ने सुसाइड कर लिया वगैरह।
1: अरे इसका भाई बोलते,
2: आपके भाई उसने सुसाइड कर लिया?
3: पीक पानी कम था इसमें, 3 साल सूखा पड़ गया था।
0: उसने बोला कि मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया है, खेती में नुकसान हुआ इसलिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सुना जरूर है लेकिन ऐसा अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है, तो मैं मिलना चाहूँगी उनसे।

0: मेरा गाड़ी खाली होने के बाद मेरे पास काफी टाइम था दोपहर के बाद, और उस टाइम को मैंने सोचा कि चलो किसी गांव में या कहीं पे जाके। उनके घर जाके मुझे उनकी मम्मी मिली जिस बच्चे ने सुसाइड किया था।
1: त्याचा ऐकलं होतं की त्याने
0: काय शेतात नुकसान झालं होतं।
2: हो ना, शेतात नुकसान झालं होतं, पिकच नाही होत जाय ना, फार पीक नाही होत जाय म्हणून कर्ज काढलं होतं।
3: 2-3 वर्ष पिकलं नव्हतं पाणी, 1-2 वर्ष पाणी कमी होतं आणि 1 वर्ष जास्त झालं।
0: जिसने सुसाइड किया यंग भी था, 25-26 साल का था। मग आणखी गावात कोणी असं केलं का आपल्याच श्यामने केलं?
3: केलं, दोघे तिघांनी केलं।
2: त्याच्या बाबानंच केलं, आमच्या घरी झालं असं 15 दिवसांनी त्याच्या घर झालं।
0: म्हणजे तुमच्याकडे त्यांनी ह्याने सुसाईड केलं, मग त्यानंतर 15 दिवसांनी दुसऱ्याच्या? अरे रे। मैंने उन्हें समझाया अपने घर में अपने हस्बैंड को खोया है तो मैंने कैसे अपने आप को संभाल के आगे बढ़ी हूँ, समझाया कि वो भी ये सारी चीज़ों को इतने मन में ना लगाए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। छोटे से बालक के साथ, वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके साथ गई थी खेत में, खेत देखने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने जाके देखना चाहिए खेत में रियलिटी। चंद्रकांत, कुछ तो ये तो खराब हो गया, कुछ अच्छा है?
3: हाँ, वो इंसेक्ट अटैक से होता है, 60% अच्छा है और 40% खराब हो गया।
0: ऐसा होता है हमेशा,
3: हर फसल में वैसा होता है।
0: अपन लोगों के खेत में पानी है क्या बोर?
3: अपन के खेत में पानी नहीं, दूसरे से खेत के पानी लाते हैं। इस प्लेस में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 300 फीट नो वाटर,
0: जमीन के अंदर पानी नहीं है, 300 फीट पे भी पानी नहीं है। उन्होंने कोशिश की थी बोर करने की और जमीन के अंदर से पानी को लेने की, पर वो संभव नहीं हुआ। 3-4 बार उन्होंने उसमें पैसा लगाया, फिर भी वो बोर फेल हो गए। चंद्रकांत ऑलरेडी वो फाइनल ईयर में एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहा है, तो अच्छा लगा कि फ्यूचर इनका जो यंग आने वाली जो जनरेशन है, अगर सभी किसान और सभी लोग अगर इस तरफ ध्यान दें और ऐसा लोगों को समझाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि हमने इसके साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए।
4: चंद्रकांत, तुम फिकर मत करो, क्योंकि आज 50% आया, कल ज़्यादा आ जाएगा।
3: हाँ।
4: अपन ने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्या?
3: नहीं,
4: सबके धंधा पानी में होता है।
3: हाँ।
4: हाँ, अभी गर्मी की वजह से थोड़ा कम आया फसल, क्योंकि अभी बारिश आएगा तो हो सकता अच्छा आए फसल। हाँ। अगला है ना, तो सही है ना?
3: सही है, सही है।